0: बच्चों के लिए। जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति है, तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने हैं, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गुण है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गुण अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धुन तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे, और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा, और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई और छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है? ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उपंक्ति यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उपंक्ति लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है, और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहाँ पर एक कामधेन स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेन विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी के रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, गुहे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे
2: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि।